Jealousy, मैंने industry में देखी jealousy. Multimedia मांगती answers, anti-allergy या फिर relaxants. इनको समझ ही नहीं मेरे जहन की, इनको कदर नहीं मेरे जुनून की. मैं Mr. Most Dream, 2 साल हो गए नींद नहीं आई सकून की. लेकिन if you don't stand for something, you end up falling for anything. Facts. And if you don't live for something, you end up dying for nothing. Sun. Do I lose sleep? मैं ख्वाब देखूं फिर भी खुल के. हम जो कहते हैं वो मुकर्रर. कोई चूतिया ही होगा मुन.

एंटी एलर्जी या फिर रिलैक्सेंट्स इनको समझ ही नहीं मेरे जहन की इनको कदर नहीं मेरे जुनून की मैं मिस्टर मोस्ट ड्रीम दो साल हो गए नींद नहीं आई सुकून की लेकिन इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू एंड अप फॉलिंग फॉर एनीथिंग एंड इफ यू डोंट लिव फॉर समथिंग यू एंड अप डाइंग फॉर नथिंग सुन

एंटी एलर्जी या फिर रिलैक्सेंट्स इनको समझ ही नहीं मेरे जहन की इनको कदर नहीं मेरे जुनून की मैं मिस्टर मोस्ट ड्रीम दो साल हो गए नींद नहीं आई सुकून की लेकिन इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू एंड अप फॉलिंग फॉर एनीथिंग एंड इफ यू डोंट लिव फॉर समथिंग यू एंड अप डाइंग फॉर नथिंग सुन दो आई लूज स्लीप मैं ख्वाब देखूं फिर भी खुल के हम जो कहते हैं वो मुकर्रर कोई चूतिया ही होगा

एंटी एलर्जी या फिर रिलैक्सेंट्स इनको समझ ही नहीं मेरे जहन की इनको कदर नहीं मेरे जुनून की मैं मिस्टर मोस्ट ड्रीम दो साल हो गए नींद नहीं आई सुकून की लेकिन इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू एंड अप फॉलिंग फॉर एनीथिंग एंड इफ यू डोंट लिव फॉर समथिंग यू एंड अप डाइंग फॉर नथिंग सुन